0: gems, and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The question.
1: Hassan ibn Sahl asked Dinar ibn Abdullah, "What is your religion?" He said, "I never thought that anyone alive would ask this question, for it is the question of Munkar and Nakir to the dead."
2: यह है आपका अपना रेडियो स्टेशन जो रहे हर लम्हा आपके साथ। आज ही अपने मोबाइल फोन में इंस्पायर एफएम का ऐप डाउनलोड कीजिए और रखिए इंस्पायर एफएम को हमेशा अपने साथ।
3: الحديث السابع والعشرون عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: Place Stevenage and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at gao express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: Move for 10 आ गया है This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
2: This is Inspire FM with you 24 hours a day. Inspire. I have

0: Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोन सा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

0: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: खराब नहीं हुई, सब माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ। और यहाँ आकर जैसे हम आए ना जब पाकिस्तान, तब सबको महसूस हुआ कि तबीयत खराब जैसे हुई, वहां पर तो कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ आपका जो एक फोकस था वो वही था आपके,
1: असल में
0: मतलब
1: जब आप
0: हर हम
1: जहन को जब आप एक टास्क देते हैं ना, और फिर आप जब उधर
0: जी
1: कोई रूहानी किस्म का एक्सपीरियंस भी तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आपका जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर देखने पे होता है, चीज़ों को महसूस करने पे होता है, तो जिस्म का जो दर्द या तकलीफ़ या परेशानी होती है ना, वो तब उसको एहसास होता है जब वो वक्त गुजर जाता है उसके ऊपर से। तो फिर जब आप वापस आते हैं, और आते जाते हुए भी, और दूसरा इसमें कमाल ये भी है कि आते जाते हुए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जहाज़ में भी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, फिर वहाँ जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ से, तो वहाँ फिर इस तरह की बहुत
0: जी
1: सारी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी फिर आदमी साथ साथ पकड़ लेता है। तो ये नॉर्मल
0: अजाजी, लेकिन

0: ये नहीं पता चल रहा था कि ये दिन है ये रात है. मतलब मैं ऑनेस्टली वहां पर 9 days जो थे वो ऐसे गुजरे जैसे 9 मिनट. सीरियसली
1: क्योंकि बिजी बहुत थे ना, आना था
0: लेकिन
1: खाना
0: आजादी
1: था, आना
0: बिल्कुल
1: था खाना था, फिर जाना था, फिर इबादत करनी थी, उसमें थकना था, फिर चूर होके सोना था, फिर सुबह उठ के वही चीज़ करनी थी। तो इस चीज़ के बीच में जो आपका क्लॉक होता है ना, रेगुलर जब आप घर में काम करते हैं, दिन की आपकी रूटीन होती है, उसमें बहुत सारे आपने रिचुअल्स करने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब आप उस तरह दिन को देख रहे होते हैं तो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि एक रूटीन को आपने बार बार करना होता है। वहाँ एक नई चीज़ होती है और वो कुछ काम होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपने वहाँ के पूरे करने होते हैं, और उस हिसाब से फिर आपका फोकस होता है, थकावट भी उसी हिसाब से होती है, नई जगह होती है, नया मुकाम होता है, नए जज्बात होते हैं, तो इस चक्कर में फिर आप थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपका बट जाता
0: लेकिन आजादी इतने सारे लोग रात दिन वहां पर तवाफ 1 सेकंड नहीं रुकता.
1: जी हाँ।
0: 1 सेकंड इतने सारे लोग.
1: जब आपने रब ने जब कोई चीज़ किसी के ज़िम्मे लगा दी हो और फिर उसके काम करने वाले ऐसे कमाल इंसान हो, और जब किसी के दिल को किसी की मोहब्बत, किसी की अकीदत, किसी की चाह जो है जब दिल को और इंसान को पकड़ लेती है, तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, जो दुनिया में होता रहता है, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हर आदमी वक्त निकाल के उसके अंदर की जो फीलिंग है, जो उसके इनर कॉलिंग है, अंदर से तो सबको पता है, रूह को तो सब कुछ पता है, ये वादा उला में हर बात रूह ने तो मानी है और गवाही दी है, तो उसको तो पता है फिर उसने किस तरफ जाना है। और वहाँ पर जब उसको वो कोई चीज़ उसको इतनी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ रूहानी तौर पे, तो वो तो फिर उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। और फिर जो लोग आपने देखा होगा, जो भी कितने ही लोग होंगे जो सोचेंगे मैं ज़िंदगी में शायद एक उम्रा करूँ या एक हज करूँ, वो फिर पता नहीं इतनी
0: जी
1: गर्मी में भी जाते हैं, वो आके कहते भी हैं बड़ा मुश्किल, बड़ी तकलीफ़ थी, बड़ा कोई ये था वो था, वो फिर तैयार हो जाते हैं, वो फिर तैयार हो जाते हैं।
0: राइट
1: ये बस ये चीज़ ही ऐसी है, जो चीज़ भी नेचुरल होती है ना, सिर्फ वही चीज़,
0: जी
1: जो काम भी नेचुरल होता है, वही काम आप तकलीफ़ हो उसमें, परेशानी हो, जितनी भी उसमें कठिन रहा हो, आप बार बार वो काम करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो एक सच्चा ट्रूथ का काम है, आपका रूह उसकी तरफ खींचता है। ये मैंने नोट किया ज़िंदगी में,
0: जी
1: और बाकियों को बड़ा
0: और
1: मुश्किल लगता है लेकिन वो आपको नहीं मुश्किल लगता। और लोग सोचते हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रही हैं, कर तो लिया है, लेकिन वो फिर बार बार जाना चाहते हैं, वो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो बस ये होता है जब ये चीज़ की सच्चे होने की और आपकी जो रूह की जो आवाज़ है उसकी हकीकत जो है बयान करती हैं तमाम चीज़ें।
0: जी जी बिल्कुल सही. और बस मैं जो है और आप कैसे हैं
1: अल्लाह
0: सब आपके
1: करे,
0: लिसनर्स के.
1: लिसनर्स बड़े
0: चलें
1: अच्छे हैं,
0: जी
1: हमने बीच में से शो वगैरह कम किए और उसके बाद अभी खैर हम बहुत सारे कोहोस्ट उस्मान जी और सजीला जी और बहुत सारे मेहरबान आपकी जो है वो स्टार्ट जो शुरू में आपकी कमी है वो पूरी करते रहते हैं, और हम शो को लेके रवान दवा हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता।
0: आपने वैसे जो अभी पूरा बयान किया है ना
1: जी
0: उम्रा, आपने आपने किया है उम्रा, आप
1: नहीं,
0: कैसे बता रहे हैं सब,
1: नहीं। कई
0: तो आपको
1: चीज़ें,
0: कैसे.
1: कई चीज़ें जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आप करें तो आपको पता हो, बस आपको पता होती है, बताने
0: लेकिन
1: वाला।
0: आप एग्जैक्टली वही बता रहे हैं जैसे मैंने महसूस किया है, वहां के जिस्म नहीं थकता, रूह आपकी हाई होती है, फिर आप हाउ डू यू नो,
1: बिकॉज हर
0: कैसे
1: चीज़ का
0: पता आपको.
1: लॉजिकल, हर चीज़ का लॉजिकल एक आंसर होता है ना, हर चीज़ का मकसद है कोई, हर चीज़ खामखा कोई भी चीज़ नहीं होती। सो जो कुछ भी होता है जब आप उसको जांचने लगते हैं, जब आप एक मकसद अपनी ज़िंदगी का बनाते हैं कि मुझको जानना है, मुझको चीज़ों की हकीकत जाननी है, मुझको जिस्म की हकीकत जाननी है, मुझको रूह की हकीकत जाननी है, मुझको एक्सपीरियंस की हकीकत जाननी है, मुझको इंसानों की हकीकत जाननी है, मुझको अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और जो अपनी लाचारियाँ हैं और जो अपनी कमालात हैं, इनको जानने की कोशिश करनी है, बाकी लोगों पर ध्यान देना है, ये क्यों हमें ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, एहसास क्या चीज़ है, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को अपनी बेहतरी के लिए, आसानी के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इनको दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप घिरा खोल देते हैं, जब आप इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने जहन को जब खोल देते हैं, जब ये किसी किस्म की ज़ातियात से बाहर निकल आता है, ये जज्बात से बाहर निकल आता है, बीमार किस्म की जज्बातियत से, तो फिर आप किसी के एक्सपीरियंस को भी फील कर सकते हैं, आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप कनेक्ट किसी इंसान के साथ कर सकते हैं, तो जो कुछ उन पे गुजरती है या गुजरी है उसको फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म आप ये समझें कि आप करके, तो उसको आप अल्फाज में बयान कर सकते हैं
0: जी
1: ऐसे करके।
0: बिल्कुल सही,
1: और जब हम करके
0: ब्यूटीफुल.
1: आएंगे, जैसे अभी हम यूरोप गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी, बड़ा मज़ा आया लोगों को। फिर इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तो जब

0: जाएंगे, तो फिर जो कुछ भी वहाँ
1: इंशाल्लाह।
0: पे होता है तो फिर उसको हो सकता है मुमताज मुफ्ती की तरह जाएं और कुछ भी ना हो, और वो जो पत्थर मारते रहते हैं ना वो जो गीटियां मारते हैं वो आगे से वापस भी मार सकता है हमको कि भाई तुम भी इनके साथ, तुम भी वापस मिलने मिले हो, आप भी गीटियां मारने के चक्कर सारे पूठे काम करके। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं,
1: नहीं
0: बहुत सारा कुछ होता है ज़िंदगी में। बट उम्मीद करते हैं जब वो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी कोई बयान कर पाएंगे।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस और क्या कहते हैं, आपके क्लिप्स वगैरह भी बहुत अच्छे आपके आते रहते हैं, उससे हम
0: हाँ जी,
1: कनेक्ट करते हैं।
0: नई सेटिंग में, नई लाइटिंग में, नए कलर में, नए बैकग्राउंड में हमने जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंचा आपको?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा, बहुत बहुत अच्छा। उससे जो है वो नई नई, हर उसमें एक मैसेज होता है और एक नई बात होती है उसमें, जो है ना, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है
0: ये आप लोग जब
1: आपके
0: उससे ये सीख
1: माशाल्लाह।
0: रहे होते हैं, मैं ये सीख रहा होता हूँ कि जब इतनी ज़्यादा लाइट्स आपकी आंखों पे पड़ रही हो तो आपने अपनी आंखों को क्यों, उसको ऐसे जो बंद क्यों नहीं करना, स्क्विंट क्यों नहीं ये कैसे आपने बेहतर से बेहतर देनी है कि आप आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, अगले बंदे को की तरफ देख रहे हैं और आप उसी से बात कर रहे हैं। हम अभी इन चीज़ों के बीच में, हमारी तगोदो इन चीज़ों तक पहुंची।
1: अरे कैमरे तो, अब आप तो हॉलीवुड कर लिया हमने, अब आप कैमरे तो खेलते होंगे, आपका फ्रेंड
0: वो
1: होगा
0: कैमरा जो है ना, वो एक्टिंग में जो
1: जी।
0: कैमरा है उसमें और लोग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको शर्म नहीं आती लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं ना सामने दीवार की तरफ देख के और कैमरे की तरफ देख के आप बात करें, और एक्टिंग में आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना होता, ठीक है, ये एक्टिंग।
1: अच्छा
0: हाँ जी, आप एक्टिंग में आपने देखा होगा फिल्म वाले, अगर एक्टर आपकी तरफ देखने लग जाए तो आप फिल्म कैसे होगी, वो उसने हमेशा आपने देखा होगा एक्टर उसको अवॉइड करता है, वो कभी भी कैमरे को नहीं देखना होता, यहाँ सिर्फ कैमरे को देखना होता है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो ऑडियंस को पता लगेगा आप उनसे बात कर रहे हैं।
1: लेकिन आप जो है ना, जैसे हम भी थोड़ी बहुत फेसबुक लाइव की थी, लेकिन आप इतना अच्छा देखते हैं कैमरे को, जैसे लगता है कि आप हमें देख रहे हैं, हम लोग इधर उधर देख लेते
0: वो
1: हैं,
0: नेचुरल
1: वो
0: करने पे ना,
1: एग्जैक्ट
0: वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती
1: जी।
0: है, जहन को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बार बार कि इस बात को करते हुए इस ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्योंकि अगला बंदा डिसकनेक्टेड फील करता है। अगर आप इधर उधर थोड़ी देर के लिए एक आध चीज़ रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी की तरफ देख कर बात नहीं कर रहे होंगे ना, उसको ये नहीं लगता कि रूह में झांक के बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, वो समझ रहे ऐसे ही किसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं
1: जी
0: ना, आप मुझसे ही कह रहे हैं, आपको कैसे पता मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप फील कराएं इस चीज़ को अगले बंदे को कि मैं भी, आप भी, हम भी, ये सब हमारी ज़िंदगी की बातें हैं, ये आपके साथ भी रहो, आपके भी, आप भी कहीं पैदा होते हैं, आपके भी माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, स्कूलिंग होती है, चैलेंजेस होते हैं, आपकी भी ख्वाहिशात होती हैं, आपके भी ख्वाब टूटते हैं और आपके साथ भी स्ट्रगल्स होती हैं, आपके भी चैलेंजेस होते हैं, फिर आपकी भी विक्ट्रीज होती हैं, और फिर ये सारी जिंदगी, और फिर आप भी जिंदा हुए, आप भी मरेंगे, आप भी बीमार होते हैं, आपको भी तकलीफ होती है, आपको भी परेशानी होती है, और यू नो रोज़ की एक ज़िंदगी की स्ट्रगल है वो तमाम लोगों के साथ होती है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये सब नहीं होता। तो इसीलिए जो बातें बताई और की जाती हैं वो हमारी बातें हैं, हमारे से रिलेटेड हैं, हमारी ज़िंदगी,
1: जी।
0: हमारी मौत, हमारे मकसद से रिलेटेड है,
1: तो
0: समझिए।
1: अजय जी, जब आपने पहले वो किया था अपना, जो आपने फिल्म की थी, तो उसमें आप बहुत सारे और भी लोग होंगे ना, जब आप एक्ट कर रहे होंगे, तो जब आपने पहला सीन किया और फिर आपने दूसरा सीन किया, तो उसमें आपका क्या डिफरेंस था? मतलब पहले सीन में ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको हुआ होगा ना, इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना, तो वो कैसा, मतलब घबराहट तो हुई होगी,
0: उनसे ना
1: लेकिन फिर
0: मैंने
1: आपने इतना कैसे?
0: वो कैसे किया का, तो देखें जो प्रेपरेशन होती है ना, जो मेरा उसमें रोल था, जैसे लॉयर का रोल था, अटर्नी का रोल था, मैं अपनी बेटी से मुझको बात करनी थी खाने के टेबल पे, अपनी बेगम से बात करनी थी, और उसमें इंटरेस्ट शो भी करना था, नहीं भी करना था, लाइट भी कॉन्वर्सेशन को रखना था, तो मेरा ज़िंदगी का वो पहला कैमरे के आगे सीन था, ठीक है, और वो लोग समझ रहे
1: जी
0: थे, और उसके बाद मेरे सामने जेरल्डीन थी जो इतनी फिल्में कर चुकी हैं, मेरे सामने पूर्वी जोशी थी जो कि 15-20 साल से वो उनकी पूरी फैमिली फिल्मों में काम करती है, वो स्टेज प्लेस पे काम करती हैं, वो कपिल शर्मा के साथ कितने सालों तक शो करती रही हैं, इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो भी, और साथ हमारी जो बेटी साहिबा थी जेरल्डीन, वो भी बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है, तो अब हम वो उनको जो स्क्रीन सबसे, इनसे पहले मैं सिलेक्ट हुआ था अपने रोल के लिए, ये बाद में आए थे, और जेरल्डीन तो बिल्कुल आखिरी दिनों में आई थी, सो उसमें अब वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब तो आएंगे तो छा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेरे घर में बैठे हुए 2 सेल्फ टेप देखी थी सिर्फ, तो सेल्फ टेप में अपने घर में बैठकर किसी से वॉइस रिकॉर्ड करा कर वो वॉइस के बाद मेरे एक्शन देना या रिएक्शन मेरा करना और कैमरे में रिकॉर्ड करना तो बड़ा आसान होता है, आप घर की कंफर्ट में बैठे हैं या अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने 2 सीन रिकॉर्ड करके भेजे, तो वो इनको इतने अच्छे लगे, उनको लगा कि भाई इनके सामने तो एक्टर्स आएंगे तो ये तो बड़ा कमाल करेंगे। अब मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे तो पता है ना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या जानता हूं और मुझे क्या पता है वो चीज मैटर करती है, क्योंकि रोल तो मैंने प्ले करना है और एक्टिंग तो मैंने करनी है। तो जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि पहले 5-6 दिन मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं बस होटल में अपना स्विमिंग वगैरह 16वीं मंजिल पे करूंगा और उसके बाद मैं कमरे में आ जाऊंगा और 5-4-5 दिन मुझे मेरा कोई सीन ही नहीं है। तो अब वो जेरल्डीन भी जा रही है अपने सीन करने और उसकी माँ भी जा रही है अपने सीन करने और मैं जा ही नहीं रहा। तो मैंने एक डायरेक्टर को बोला कि भाई, क्लियर बोला मैंने कि मेरा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतनी बड़ी फिल्म है तो मुझे कम अज़ कम एक दफ़ा शूटिंग होते हुए तो दिखा दो कि शूटिंग कैसे करनी है, ठीक है, कि एक्टिंग होती कैसे है, कैमरे के आगे करते कैसे हैं, टेक्स कैसे होते हैं, रीटेक्स कैसे होती हैं, कैमरा रिहर्सल कैसे होती है, और स्पेशली और जो हमने एक आध दफ़ा देखा हुआ था वो टोटली और पाकिस्तान की बात और होती है, यहाँ पर कैसे करेंगे, आपका माइंड जानना चाहता है ना, तो डिस्टर्ब रहता है, वरना उसको लगता है कि यार ये मैं कैसे करूँगा इतनी बड़ी फिल्म में, मेन मेरा लीड रोल है फिल्म का और मेरे इर्द गिर्द सारी फिल्म और वो बेटी और मेरे इर्द गिर्द रिलेशनशिप के इर्द गिर्द सारी फिल्म घूम रही है, तो मैं कैसे करूँगा। तो खैर उन्होंने पहले तो कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है, फिर उनको मैंने जब ज़बरदस्ती कहा, मैंने कहा जी मुझको एक दिन पहले दिखा दें कम से कम क्या होता है, फिर मैं उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि वो एक्टर को बुलाने का ये नहीं होता कि वो आए गाड़ी में और वो सीन देख के चला जाएगा, उसके लिए फिर वो ट्रेलर आपको देते हैं, फिर ट्रेलर मेकअप और ये और वो बड़ा सब कुछ होता है, तो इसलिए उनको बड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे करने होते हैं एक्टर के लिए। खैर तो वो फिर मैं जब गया वहाँ पर तो फिर मैंने वो एक सीन है जिसमें वो कपड़े खरीद रही होती है जेरल्डीन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगले दिन उन्होंने जब मुझे बुलाया तो बजाय इसके अब हम तीन एक्टर, मैं आपको बताऊं फिल्म में काम करना ना कोई आसान काम नहीं, ये खाला जी का वेड़ा नहीं है जो लोग इसीलिए स्टन हो जाते हैं या घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा या बिल्कुल शेल शॉक में, बड़े बड़े एक्टर्स शुरू में आते हैं तो शेल शॉक हो जाते हैं, उसका रीज़न है। अब उनको क्योंकि वो हफ्ते से उनके साथ वो एक्टिंग कर रही थी लेडीज़, तो उनको वो प्रैक्टिस उनकी होगी तो वो कंफर्टेबल हो गए। मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला, आई थॉट कि 2 कैमराज होंगे, एक्शन रिएक्शन होगा, वो बोलेंगी जब तो मैं उस वक्त रिएक्शन दे दूंगा तो कैमरा पकड़ लेगा उसको, तो मुझे तो बाद में पता चला कि भाई पहले तो एक कैमरा सिर्फ होगा, ठीक है, एक कैमरा पहले मेरे ऊपर होगा, मैं अपने सारे डायलॉग बोलूंगा, वो दोनों स्क्रीन पे होंगी भी नहीं, फिर जेरल्डीन पे कैमरा, वो जब ठीक हो जाएगा मेरा, जितनी दफ़ा गलत होगा मैं दोबारा करूंगा, फिर जब वो ठीक हो जाएगा फिर जेरल्डीन पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर कैमरा होगा, फिर वो ठीक करेगी, जब तक वो ठीक नहीं करती जहाँ जहाँ गलती करती है वो रीटेक होगा, फिर कैमरा पूर्वी जोशी पे जाएगा और फिर पूर्वी जो हैं वो करेंगी, जब तक वो ठीक नहीं करती वो चीज़ मतलब कन्फर्म नहीं होगी। अब ये तीन बंदे हैं तो एक ऐसा शॉट भी होगा जिसमें ये तो बताते हैं ना कि तीन बंदे टेबल पे बैठे हुए हैं, तो फिर एक और शॉट होगा उसको भी जब तक हम सही नहीं करेंगे, तीनों अपनी अपनी लाइन सही नहीं बोलेंगे, उसमें से भी एक शॉट लेंगे वो, तो इस तरह ये सारे, तो अगर वो एक दफ़ा इतना भी कर देते ना कि पहला कैमरा पूर्वी जोशी पे लगा देते और मैं और जेरल्डीन प्रैक्टिस कर लेते, फिर दूसरा उसी दफ़ा जेरल्डीन पे लगा देते या सेकंड पे मेरे पे भी आ जाता तो खैर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पता नहीं खान साहब क्या करेंगे, वो इतने बेचारे मेरे सेल्फ टेप से, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप इतने अच्छे सेल्फ टेप आपने किए, आप तो कमाल करेंगे, तो वो उन्होंने पहला ही कैमरा मेरे बूथे पर लगा दिया। तो अब जब उन्होंने मेरे पे लगाया तो मैं तो अर्थ हो गया। मैंने कहा ओ ये तो मेरे पे आ गए, अच्छा अब मैं क्या करूँ, हमने मेथड एक्टिंग की एक्टिंग सीखी हुई है, ठीक है, हर चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा इस तरह शायद बताता नहीं है कोई या एक्सप्लेन नहीं करते, लोग कहते हैं जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब मेथड एक्टिंग में आपने रियल करना है चीज़ को, एक्टिंग नहीं करनी, बस ये एक्टिंग है कि आपका सीन हुआ, आपने एक्टिंग नहीं करनी। तो जब मैं बैठा सीन करने के लिए, तो अब मैं अगर अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, अपनी बेगम से बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में अगर आप ये बात करें तो आप क्या मियाँ बीवी से या बेटी से बात करते करते खाना छोड़ देते हैं, आप खाना खाते खाते बात करते हैं ना। तो उन्होंने खाना डाला, अब मैं साथ कांटा चम्मच भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं साथ खा भी रहा हूँ, वो साथ में पानी भी पी रहा हूँ, साथ में बातें भी कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, वो तो चले हो गए। उन्होंने कहा ये क्या भाई। तो उनको मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू मेक इट ओरिजिनल, कहते ओए होए, कहा डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट से द लाइंस। तो मैंने कहा मैं क्या, उन्होंने फिर मुझे नई प्लेट दी, फिर मेरे आगे खाना उन्होंने डाला, मैं क्या ओके इसमें क्या है। तो फिर मैंने लाइनें बोल दी और फर्स्ट सीन ही ओके हो गया। अब मुझे तसल्ली ना हो एज एन आर्टिस्ट के भाई ये तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ लाइनें बोली, अभी तो मुझे एक्टिंग करनी तो उन्होंने कहा एक्टिंग की जरूरत नहीं, एक्टिंग होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो फिर बहुत आसान है कि एक चीज़ को 15 दफ़ा बोलना है हमने और दूसरे लोगों के साथ रिएक्शन एक्शंस भी आपने करने हैं, तो ये तो फिर मैंने कहा चलें ये तो फिर हो जाएगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा ज़िंदगी ली तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi asharan, that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road.

0: We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension, and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van, or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram, and Facebook.
1: Assalamu alaikum rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
2: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
3: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now, or visit islamichelp.org.uk.
4: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
5: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine show with Brother Tariq here on 105.1 FM.
4: The way you warm mine and make this room glow, dust where you brushed from the beard.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
7: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए. क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. Only on Inspire FM.
8: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
9: So azadi to itna mushkil. आपने किया कि मतलब कोई आपको आप पे ही कैमरा है और आप ही सब कुछ कर रहे हैं. वरना तो ये होता है ना कि बात रिप्लाई हो रही है तो आप जवाब दे रहे हैं तो वो एक अलग होता है. लेकिन सिर्फ आप पर ही रख के पूरे एक्सप्रेशन लाना और आप मतलब आप डायरेक्ट भी कर रहे थे उनको कि इस तरह से करना है क्योंकि ये वाकई बड़ी नेचुरल चीज है कि आप खाते हुए तो रुकते थोड़ी है.
7: लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए होता ना. वो बेसिकली जब आप खाते हैं तो टक टुक की आवाज भी आती है चीजें भी आती है तो वो उसको सिंपल करना चाह रहे थे. तो कई लोग जो होते हैं ना वो सिंपलिस्टिक तरीके से सीन्स लेते हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन. आपको जो डायरेक्टर बोलता है आपने वो करना होता है. तो पूरी फिल्म में मुझे सिर्फ डायरेक्टर ने दो दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दी. उसके अलावा फर्स्ट टेक सेकंड टेक में सारा कुछ हो जाता था. उन्होंने बड़ी तारीफ करते थे बड़ा प्यार करते थे और कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ इसको दोबारा कर दें. बल्कि मैं खुद कहता था एक दफा और कर लें एक दफा और कर लें.
9: नहीं वो रोल तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि अंगूठी में नगीने की तरह क्योंकि आप थे हैं भी माशाल्लाह से पठान और आपका जो एक कैरेक्टर था वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. बल्कि आप उनको गाइड कर रहे थे कि इस तरह नहीं ये चीज इस तरह.
7: उर्दू के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. उसकी बहुत सारी जो उर्दू उसमें बोली गई है वो मैंने लिखी है क्योंकि जो पहले उर्दू लिखवाई गई थी वो यहाँ की बॉर्न रेज लेडी से लिखवाई गई थी. तो फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं आप जनाब और इस तरह की बातें नहीं होती उसके अंदर. तो आपने उसको बहुत लाइट सा रखना होता है जैसे घरेलू तरीके में बातचीत होती है. आपने देखा होगा जब भी ये पाकिस्तानी फिल्म्स बनाते हैं या पाकिस्तानी फिल्म

0: हॉलीवुड में भी बनती हैं या इंडिया में भी बनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की उर्दू और जनाब बोलना शुरू कर देते हैं। जनाब वहाँ कोई भी नहीं बोलता, वो सिर्फ मजाक के लिए कहते हैं। सो इस किस्म की बहुत, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हमने की, फिर उसके बाद मैंने और पूर्वी ने बहुत सारी चेंजेस भी की उसके अंदर लाइनों में और चीज़ों में। तो बहुत फिर वहाँ पे एक उर्दू के एक टीचर भी थे, वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए थे, उनसे भी कंसल्ट किया गया था। और फिर उनको मैंने ही कहा था कि ये जो लेडी तलाक दे रही हैं, ये सीन नहीं हो सकता, ये इस्लाम में जायज़ नहीं और ना ही इसको कोई मानेगा। लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं, वो बीबी से तलाक दिलवानी है तीन। वो उसके ऊपर बड़ा उनको, उनसे उन्होंने भी कहा कि ये एक मसला खड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये है ही नहीं ना रिलीजन के अंदर, है ही नहीं, खुला ले सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती। लेकिन वो एडमेंट थे, वो यहीं की बॉर्न एंड रेज, उन्होंने कहा नहीं हम दिला के छोड़ेंगे। हमने कहा दिला दें फिर सड़क की फिल्म में, तो उस डायरेक्टर ने और राइटर ने करने ना, वो तो उनका काम है, आप तो सिर्फ
1: सही बात
0: है। आप तो सिर्फ बात बता सकते हैं। और फिर और भी दो चीज़ें थी जो मैंने फिल्म के अंदर, मुझे उसमें जो फ्लॉज नज़र आए थे, मैंने उनसे ज़रूर बात की थी उसके बारे में कि हमारा काम है जब आपको कोई झोल नज़र आए किसी चीज़ में। तो बेचारे थोड़े से घबराते भी थे। फिर जब मैंने गाना उसमें शुरू किया, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो आगे से मुझसे डायरेक्टर आई, मुझसे पूछती आप सिंगर भी हैं? मैंने कहा नहीं, आज से पहले तो नहीं था। तो मैंने कहा जी, मैं तो एक्टर भी नहीं था पहले, मैं तो रेडियो का बंदा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी, फिर उन्होंने फारसी में मुझसे कुछ पूछा, फिर अरबिक में कुछ बातें हुई, फिर जेरिलिन को मैंने वो रिकॉर्ड करके दी, वो जो आखिर में नमाज रिकॉर्ड करके दी ताकि वो जो आखिर में पढ़ती है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सीन थोड़े से चेंज भी किए गए हैं। पहले पहला सीन जो हमारा था वो अफ्तारी के ऊपर था, तो उसमें अच्छा। मैंने हाँ जी इफ्तारी की दुआ जो है वो मैं रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं, तो वो था जो बदल दिया गया सीन। इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस की गई हैं फिल्म के अंदर। तो आपको जो मिला है, इंशाल्लाह किसी दिन अगर हमें डिलीटेड सीन मिले तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एक्टिंग हुई हुई है जो काट दी।
1: माशाल्लाह से आप इस मामले में भी बहुत लकी रहे, अजा जी लकी रही है क्या कि आपने जो सॉरी भाई का प्ले किया था उसमें जो नुमान एजाज साहब, इतने सालों एक्सपीरियंस, इतने एक्सपीरियंस, एंड दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज प्ले जो आपने एक्ट किया था।
0: नहीं, मैं उससे पहले उस्मा गिलानी जो कि उनसे भी सीनियर हैं, तो क्या क्या हमने तीन काम किए, और वो तीन काम इतने सीनियर और इतने कमाल लोगों के साथ किए जो कि लेजेंड्स हैं अपने अपने। तो उनके साथ काम करने से जो एक्सपीरियंस आपका 10, 15, 20 साल में होना था ना, वो तीन चार एक्सपीरियंसेस में ही हो गया। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, आप जब भी काम करें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा हो ना, उसके साथ आपको काम करना चाहिए ताकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग हो सकती है आपकी जो वैसे नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल,
0: खुश रहिए, हमारे साथ रहिए, मेहरबान कदरदान, और भी लोग हैं हमारे साथ। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो। और उससे हमें हाला याद आ गई बड़े दिनों के बाद। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
2: जी सलामकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल मजे में। अभी
0: बोर तो नहीं किया हमने और अफशन जी ने आपको? हम दोनों ने मिलके बोर तो नहीं किया आपको?
2: नहीं, मैं सुन रही थी।
0: जी
2: तो मैं ये कहूंगी कि जो आप लोगों ने रेडियो शो शुरू किए, वो मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ और मैं अपनी बुक्स भी घंटों सुन सकती हूँ। तो मुझे आई एम अ लिसनर ज्यादा, तो मुझे मजा ये आता है कि अच्छा कंटेंट और अच्छा बोलने वाला हो या अच्छी बुक हो तो मतलब यू एंजॉय। लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोग चले गए हैं उस पे विजुअल पे। ये बताएं कि करते वक्त मैं ये कहूँगी एनर्जी डिवाइड हो जाती है।
0: हाँ जी,
2: विजुअल में और ऑडिटरी में और दूसरी चीजों में भी
0: बहुत मुश्किल।
2: डू यू थिंक कि यू जस्टिफाई विद ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम, और कुछ चीजें विजुअल खा जाती हैं? जो आप हमसे बातें करते थे शुरू के प्रोग्राम्स में, तो वो बिल्कुल ही फोकस होता था कि हम सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं।
0: जी
2: अभी इस वक्त जो है, आप लोगों के कई महल हैं कि वहाँ पे आपको देखना है, कमरा साफ है, लाइट सही है, साउंड सिस्टम तो चलो उसके साथ है, लेकिन द अटेंशन इज डिवाइडेड। दूसरा ये बताएं कि इंसानी नेचर में हमारी जिंदगी खुद ड्रामा है, एक तरह से देखा जाए इट्स ऑन गोइंग ड्रामा फॉर 1800-1900 ईयर्स। इसके बावजूद हम सब दूसरे ड्रामे देखने और उसका मजा लेने या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट कीड़ा?
0: ये सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन पहले कर दूं। क्वेश्चन आपका ये कि हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में, तो फिर हम दूसरे जो ड्रामे हैं, जो टीवी के ड्रामे हैं, जो बाकी दुनिया के जो ड्रामे हो रहे हैं, उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है वो, और ये कीड़ा क्यों है कि हमें हर एक की ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी के जो ड्रामे इतने शौक से हम देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग का काम है ना, अगर आप पीछे जाएँ इंसान के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो अगर आप किताब खोलते हैं रब की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रब ने आपको बहुत सारी कहानियाँ हमसे हज़ारों साल पहले की जो कौमें थीं उनकी भी कहानियाँ सुनाई और उनके बारे में हमें बताया, क्योंकि 3, 4, 5, 10 हज़ार साल पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थीं हमारे पास किस तरह हमें डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती, जैसे ज़ुल्करनैन के ज़माने के बारे में बात की गई है, इस तरह और बहुत सारी बातें की गई हैं। तो इंसान कहानियों में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर रब ने एक बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ एक इंक्विजिटिव रखी, इंक्विजिटिवनेस रखी है। इंक्विजिटिव होने की वजह से उसके अंदर एक इन बॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरियोसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब उस क्यूरियोसिटी के वो इसलिए है कि हम अपने बारे में खोजें, अपने बारे में जानें, दुनिया के बारे में जानें, तारीख को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हम कोई नतीजा अखज़ करें, उससे हम लेसन लर्न के साथ आगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर सकें, बार बार वो गलतियां ना करें, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी कहानियों से इबरत भी हासिल कर सकते हैं, सबक भी हासिल कर सकते हैं और अपनी डगर भी हम जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि अपना रास्ता जो है वो किस तरफ होगा। इसलिए इंसान को इनक्विजिटिवनेस जो है वो उसकी ज़ात के अंदर क्यूरियोसिटी डाली गई है। हमने क्या किया, हमने क्योंकि हर चीज़ को हम नीच तरीके से सोचते हैं, जैसे हम रब जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे जहन की जो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमारी सोच नीच है, तो हमने किया कि रब के कॉन्सेप्ट को नीच बना दिया कि रब सिर्फ मेरा है या मेरे मसलक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है या मेरी सोच से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, बाकियों का नहीं है और मैं ही जो हूँ वो आला वरफा हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा। तो ये हमने ये इस तरह की सोच से रब अनलिमिटेड को और लिमिटलेस को लिमिटेड कर दिया ताकि हम उसका अहाता कर सकें। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो ड्रामे जो ज़िंदगी में है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमें जब एक्टिंग स्कूल में थे, हम मेथड एक्टिंग जब हम सीखने गए हॉलीवुड में, तो उन्होंने पहली 2-4 क्लासेस में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ड्रामा ना हो, वो स्क्रीन पर ड्रामा करें। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में ड्रामा होगा और बहुत ड्रामे होंगे तो फिर वो एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो एक्टर की लाइफ में ड्रामा कम से कम होना चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए या अनइवेंटफुल भी हो सकती है, लेकिन उस जो स्क्रीन के ऊपर जो उसने ड्रामा करना है उसकी जो प्रेपरेशन या उसका जो फोकस है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही चीज़ को बार बार देखने से आप बार बार एक ही चीज़ सीखेंगे और वो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है। तो जो आपको जो क्वेश्चन है, दूसरों की लाइफ में तब आपको इंटरेस्ट होता है जब आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप कितना बैक व्यू मिरर में देखते हैं, कम से कम जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप साइड चेंज करने लगते हैं या जब छोटी मोटी कोई चीज़ होती है या पीछे का ट्रैफिक आपको किसी कभी कभी कभी आप बैक व्यू मिरर में देखते हैं, ज़्यादातर आप आगे देख के गाड़ी चलाते हैं या राइट लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब, वरना आप सीधा आगे की तरफ। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को, पास्ट में चीज़ों को तब देखते हैं कि आपने क्या सीखा था, क्या समझा था। राइट लेफ्ट आप तब देखते हैं जब आप अपनी अलाइनमेंट सीधी कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं कि आगे जो ट्रैफिक है मुझे उसके हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या रखनी चाहिए और मुझे किधर गाड़ी को लेके जाना है और किधर नहीं लेके जाना है। जैसे ही आगे के ट्रक या बड़ी चीज़ आती है आप हमेशा उसके राइट या लेफ्ट जाना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज इंसान का जहन जो है वो देखना चाहता है आगे क्या है, क्योंकि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डायरेक्शन गुम हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं मैं, कभी शावर लेते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा आपको टोटली नॉर्थ जो है वो और है, आपका मुँह ही किसी और तरफ होगा, एक दो मिनट में आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आँखें बंद करते ही आपकी डायरेक्शन जो है वो गुम जाती है। ठीक है, जैसे पानी कान में पड़ जाए तो क्या होता है, तब भी आपका जो ना बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, बंदा गिरने लगता है, चक्कर आने लगते हैं बंदे को। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। तो ड्रामा जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में है या इर्द गिर्द हो रहा है उससे आपने सीख लिया, फिर आगे बढ़ गए। बार बार एक ही ड्रामा देखना और एक ही तरह के काम करते रहने से फिर आप कुछ नहीं सीखते, बल आप उस ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो ड्रामे का जो ना ड्रॉप सीन जो है वो आप खुद ही हो जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: तो ये
2: बिल्कुल।
0: एक पॉइंट था वो ड्रामे वाला। उससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सवाल आपका ये था कि आपने कहा कि जब आप रेडियो पर शो करते थे तो सिर्फ आवाज़ से आप तमाम चीज़ें करते थे और आपका फोकस जो था ना सिर्फ आवाज़ के ऊपर और अपना मैसेज देने के ऊपर होता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअल भी हो गया, डिजिटल मीडिया भी हो गया, तो इसमें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी। तो इसका जवाब है, बाकी लोगों के लिए तो हुई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है जी, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट होता हूँ ना तो फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ और मैं इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सोचना चाहता, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पे लाइट्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन जब एक आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे वो कैमरा स्क्रीन के मैं मिडिल में बैठा हूँ या नहीं बैठा, लाइट्स प्रॉपर लग रही हैं या नहीं, और ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा लगूँ। इस बात को भी गौर से सुनिएगा, कैमरे के आगे जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताने की ये जसारत कर रहा हूँ कि कैमरा है क्या चीज़ और वो क्यों हर बंदा कहता है कि जी वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, वो एक तस्वीर जो है वो आपकी बहुत सारी बातें जो आप शायद हज़ार अल्फाज यूज़ करके बताएं वो आपकी एक तस्वीर दे सकती है। बिल्कुल इसी तरह कैमरा जो है ना, वो तस्वीर तो छोटी चीज़ है, कैमरा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप जब आंख नहीं मिला पाते या जब आप ऑथेंटिक नहीं होते या जब आप फिल्म में आपने देखा होगा जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते तो वो और छोटी से छोटी चीज़ कैमरा पकड़ लेता है, ठीक है जी। तो इसलिए जब आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा बंदा जो आपको देख रहा है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बैलेंस में रखना है। अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं तो आपको स्क्रीन में दरमियान में होना चाहिए, माइक आपके सामने होना चाहिए, लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गलत, अगर कोई शेडो भी आएगा तो बार बार बंदे का वहाँ पे जहन जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ चमक रही है माथे, जो कि पसीना कभी कभी आ जाता है, उसको भी डैब करके हटाना पड़ता है, वरना अगर कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो काम की बात सुनते सुनते अगर उनका जहन जो है वो आपकी माथे की चमक पर गया तो वो बार बार उसी को देखते रहेंगे। वो जो माइक पेंस नहीं था उसको मक्खी बैठ गई थी तो हर बंदे ने सारी उस कोई बात किसी ने नहीं सुनी, बस मक्खी के ऊपर सारा तबसरा था। इसी तरह जो आपके बाल हैं, जो आपकी शक्ल इस वक्त लग रही है, जैसे आपने कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, ये सब चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट कोई पुट अक्रॉस करना चाहते हैं या कोई रीज़न एंड लॉजिक देना चाहते हैं किसी इंसान को कि वो उसको गौर से सुने, आप कैसे लग रहे हैं कि बजाए वो जो बात की गई है वो उसके दिल को पकड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको पता है स्क्रीन का अटेंशन स्पैन कितना है, यूट्यूब का आपको पता है जो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो 3 सेकंड के बाद काउंट होता है, यानी कि लोग 3 सेकंड से पहले ही स्किप कर देते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन के ऊपर जब आप आएँ तो आपकी आवाज़, आपका अंदाज और जो भी आप कहना चाहते हैं उसको पहले 4-5 सेकंड में जो आप कहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वरना स्किप कर दिए जाएंगे आप। तो बिल्कुल इसीलिए कैमरा जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके सामने काम करना और उसके तमाम लवाजमात पूरे करने की कोशिश करना। इसीलिए अभी हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वेब कैम से हमने कोशिश की आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की, बैकग्राउंड यू नो बहुत सारी और चीज़ें, जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ हम काम नहीं करते थे शुरू में भी, जितने लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस और यू नो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं वो सब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी शेफ़ नहीं होता रेस्टोरेंट्स के अंदर। सब लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता चलता है नान लगाने के बड़े पैसे मिलते हैं, $3,000-4,000, तो फिर वो नान बाई बन जाते हैं, ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में सू शेफ़ कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वो यही काम करता है एक्चुअली। लेकिन बाकी जितने भी लोग इस वक्त रेस्टोरेंट्स में खाना पका रहे हैं सब ने यूट्यूब से सीखा हुआ है, इसमें से कोई पक्का मिसालची जो है ना पिछले जो ज़माने का खाना पकाने वाला जो है ना वो बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सोच के आपने ये बात को आगे लेके चलना है कि लोग दे कीप लर्निंग अलॉन्ग द वे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं और फिर, और कभी कभी हम जब लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो सालों लग जाते हैं, हमें काम का बंदा नहीं मिलता, और फिर मुसलसल कोशिश करने के बाद जब आपको बंदे मिलते हैं तो आपको पता चलता है जो काम 2-3 दिन में हो सकता था इसके लिए हमारे 2-3 साल लग गए, लेकिन वो प्रोसेस है इन तमाम चीज़ों का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रेडियो आज़ाद पे भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और अभी भी हमने दुनिया में बाहर निकलने की उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, और उसके भी कुछ रीज़न्स थे। लोग जो है ना, ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ या रेडियो आज़ाद पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इनकी मार्केट वैल्यू दुनिया में उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं, ठीक है। दुनिया में और बहुत कुछ बिकता है, अगर इसकी जगह हम एक बिल्ली रख लेते और बिल्ली को अजीब अजीब तरीके से गुदगुदाते रहते और उसकी वीडियो बनाते तो मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं, और जितनी आप निकम्मी स्टूपिड बातें करते हैं उतने आपको दुनिया में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, कभी उसको लोग इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादातर लोग मेंटल कैलिबर भी हमारा इतना ही है और इतनी है हमारी अक्ल और समझ बूझ भी है, ठीक है। क्योंकि जब आप हैवानी हालत में और एक धक्का इनर्शिया के स्टेज में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो काम की अक्ल की समझ की बातें जो है ना वो आपको, ये बातें आपको लगती हैं जब 30 32 35 40 साल आपकी उम्र हो जाती है ना, और जब आपको पता लगता है कि जो कुछ आपने अपने बारे में सोचा था, जो कुछ दुनिया के बारे में सोचा था, और जो कुछ आपने रब के बारे में और आखिरत के बारे में सोचा था वो वैसा था ही नहीं, वो कहानी कुछ और है, अब फिर से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, उसको बहुत सारे लोग उस वक्त तक बिटर हो चुके होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो रिएक्शनरी एक लाइफ जीते हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। आज का क्लिप बड़ा अच्छा था, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ज़िंदगी के साथ साथ ना, आपने देखा होगा हर बंदा लर्निंग पे बड़ा जोर देता है, लेकिन साथ साथ अनलर्न करना भी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बच्चे थे तब से लेके जवानी तक और मिडिल एज तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें रास्ते में पिक कर ली हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है जी, जो कि हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, मुजरे सेहत है हमारे लिए, जहनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी, रिश्तों की सेहत के लिए भी, और ज़िंदगी में जो हमारा मकसद है उसकी सेहत के लिए भी। तो इनको आपने अनलर्न भी करना होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी। वो शौहर जो बीवी पे ट्रस्ट नहीं करता उसकी ज़िंदगी अजाब में है, वो बीवी जो शक करती है अपने शौहर पे वो हर वक्त तकलीफ़ में, उसने खुद अपने आप को आग लगाई हुई है, ठीक है जी। और जो लोग अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग जिनसे अपने बिजनेस जो वेंडर्स हैं आपके उस पर ट्रस्ट नहीं करते, जो एडवर्टाइजर्स हैं आप उनके या वो आपके उन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये सारे का सारा काम ट्रस्ट पे खड़ा है। रब के साथ जो हमारा रिश्ता है, आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं चीज़ों को, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर खड़ा है। इसीलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, इंसानों के ऊपर एतमाद करना, आँख खुली रखना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कब तक आप हर वक्त, अन्ना नहीं था जो 24 घंटे चुकन्ना रहता था, पता नहीं वो क्या करता रहता था, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कॉर्टिसोल बॉडी में इतना स्क्रीशन उसकी होती है, बंदे को समझ नहीं आता, बंदा फामा हो जाता है, ना उसको नींद आती है ना कुछ। और मैं जितने लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ इतनी अनसर्टेनिटी में मर रहे हैं, वो किसी पर वो भरोसा नहीं करते, किसी पर भी। और यकीन करें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जिन लोगों को भी देखा है ना, वो किसी पर भरोसा नहीं करते, मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता, कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं वो उनकी अपना जहन है, और मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में मार खाते देखा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रियली रियली स्टूपिड इन द एक्शंस दैट दे हैव टेकन इन देयर लाइफ। इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, हमारी चॉइसेस स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत रिफाइंड बींग है, लेकिन हमारी चॉइसेस चीख चीख कर हमें बता रही होती हैं कि हमारी चॉइसेस स्टूपिड है। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारी स्टुपिडिटी होती है, जिस एनवायरनमेंट को हम चुनते हैं किसी काम के लिए वो हमारी स्टुपिडिटी होती है। एक सेमो थोर वाली ज़मीन के अंदर आप बीज डाल देते हैं और आप फिर कुदरत के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई मेरा फसल नहीं लगी, मेरे साथ जुल्म हो गया, आपने प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी पर भी नहीं, सिर्फ अपने जहन पर ट्रस्ट करके वो चलना चाहते हैं, और उनका जहन कॉन्ड है पहले से, उन्होंने कुछ चीज़ें जो बचपन में उनके साथ हुई हैं उसको अपने साथ आज भी बांध रखा है। जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आप अच्छे दोस्त की डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, अच्छा दोस्त बनने की क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपको कभी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, डिज़र्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, और अगर आप नहीं डिज़र्व करेंगे ना तो मिली हुई चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपने दोस्तों के, इसीलिए मैं ही अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ऐसा बंदा अपने आप को मिला हूँ जो दिल से ये कह सकता है कि मेरे जो 5-6 दोस्त हैं उससे बेहतर मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी, मैं रेडियो पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों को मिलके भी मैं उनको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या किया, वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। और मैं अक्सर जब लोग मुझे गिराने की, तोड़ने की, तकलीफ़ देने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं, चाहे फैमिली से करें, चाहे बाहर से करें, चाहे बिजनेस वाले लोग करें, या जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूँ लोग ये पूरी कोशिश करते हैं, वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाते, एक वजह से सिर्फ क्योंकि जैसे मेरे दोस्त हैं वो मुझे कभी टूटने नहीं देते, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 40 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे मान जाऊँ आगे होगा? अगर होगा भी तो एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार, सब नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो रिश्ते हैं इसके ऊपर काम किया होता है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंसानों के ऊपर करना पड़ता है जो आप किसी पर नहीं करते। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो खुद ट्रस्ट के काबिल हैं? ये सवाल मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या आप किसी के ट्रस्ट के काबिल हैं? और जवाब अक्सर ना में होता है, क्योंकि जब जब मैंने उन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया। लेकिन उनके पास लॉजिक्स, रीजंस सारे पूरे होते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहाने, आपने एक दफ़ा अपने जहन को, सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपने आप में बदल लेना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप जब गलती करते हैं ना तो उसके बहाने ना बनाएं, उसकी इलॉजिकल लॉजिक्स ना दें, उसकी जस्टिफिकेशंस ना दें। आप कभी नहीं सीखेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि जिस जहन को बहाने सूझने लगे और उसने दे एंड ही कुड गेट अवे विद दोज बहानाज, एक्सक्यूजेज, इलॉजिकल लॉजिक्स, वो कभी चीज़ नहीं सीखेगा। जिस आदमी को नकल करने की आदत हो जाती है, बूटियाँ बनाने की आदत हो जाती है, किताब रख के पेपर देने की आदत हो जाती है, वो कभी इल्म नहीं हासिल करने की कोशिश करता। उसको पढ़ाई सूझती नहीं है, उसको सवाल याद ही नहीं होते। मैं जानता हूँ लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग इसी तरह बड़े हुए हैं, वो तब भी नकल मार रहे थे, वो आज भी नकलें मार रहे हैं दूसरे लोगों की, और कहीं नहीं पहुँचे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में फेल हो जाना वो बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको शर्म आ सकती है, आप गैरत पकड़ सकते हैं, आप जो है वो कुछ उठकर कर सकते हैं। लेकिन अगर नकलें मार के आपको पास होने की आदत हो गई, आप अपनी दोस्ती में भी फेल होंगे, आप अपनी बेगम के सामने, शौहर के सामने भी फेल होंगे, आप अपनी औलाद के सामने भी फेल होंगे, आप अपने पार्टनर्स के सामने भी फेल होंगे, आप रब के सामने भी फेल होंगे। क्योंकि रब इसीलिए कहते हैं ना कि जो हुज़ूर पाक की कितनी खूबसूरत बात, जो इंसान इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, मुझे खान जी का वो जुमला याद आता है, मैं 6-7 साल का था, उनके पास लेटा हुआ था, मैं कोई बात कर रहा था कि रब से मोहब्बत की हम अक्सर बात करते हैं, रब की मोहब्बत जो है वो कैसे हासिल हो सकती है? तो उन्होंने कहा रब की मोहब्बत का रास्ता जो है ना वो इंसानों के दिलों से होकर गुजरता है, जो इंसान इंसानों के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता वो रब तक नहीं पहुँच सकता। बहुत छोटे थे हम, वो उस वक्त कोई रूमी की किताब पढ़ रहे थे कोई, या जो उनकी बुक्स होती थी, तो लोगों के दिलों से गुजरते हुए ही ये रास्ता बनता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर कहना भी चाहता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे यही बातें कहने के लिए मैं लोगों से नहीं मिलता।
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैसी थी आपकी इबादत? नमाजें कैसी थी? रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते, पांव सूज जाते। आपसे कहा गया कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए, फिर क्यों आप अपने आप को इतना थकाते हैं? तो आपका जवाब क्या होता? अफला अकूना अब्दुन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊँ? इतनी नेमतें उसने मुझे दी हैं, मैं शुक्र ना अदा करूं? हमारी इबादत किस लिए होती? मजीद कुछ लेने के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किस लिए थी? शुक्रगुजारी के तौर पर, यही इबादत है। तो यहाँ उनको अब्द कहा गया है। और इबादत का वही तरीका, पसंदीदा तरीका है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर कोई इबादत आपके तरीके से हटी हुई है, मसलन कोई ये कहे कि मैं इबादत का एक नया तरीका निकालता हूँ, तो वो तरीका काबिले कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं। अल्लाह का बताया हुआ तरीका किसके तरीके से हमें पता चलता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वह इन कुन तुम फी रैबिन, और अगर हो तुम किसी शक में, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारा, यानी कुरान मजीद, कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, फ़ातू, तो ले आओ, बिसूरतन, कोई सूरत, मिन मिसलिही, इसकी मानत, इस सूरत जैसी कोई सूरत तुम भी बना लाओ, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं। और आपको मालूम है कि अरबों के पास एक ही चीज थी, और वो थी अरबी दानी, कलाम जानना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत जोर था, अल्लाह ने उनको ऐसे मौजज़े दिए जिससे जादू का तोड़ हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बहुत जोर था, अल्लाह सुबहान तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ात दिए जिससे तिब का मुकाबला हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों के पास न जादू था न तिब थी, क्या था? जबान, जबान के माहिर थे। अल्लाह ने ऐसा कलाम उतारा कि उनको बेजबान कर दिया। तो इसीलिए चैलेंज किया जा रहा है, अगर तुम कहते हो कि ये किताब अल्लाह ने नहीं भेजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख ली है, तो क्या करो? इस जैसी एक सूरत ले आओ। सूरत यूनुस में आता है, फ़तू बिसूरतिन मिसली, इसकी मानिंद एक सूरत लाओ। सूरत हूद में आता है, फ़तू बिआशरि सूवरि मिसली, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। सूरत बनी इसराइल में आता है, अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, इस कुरान जैसा ले आओ। सूरत तूर में आता है, फल यातू बिहदीसिन मिस्लि, इस बात जैसी कोई बात ले आओ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ वो न बना सके, कुछ भी न ला सके। और लोगों ने कोशिशें भी की, लेकिन कोई भी कुरान जैसी चीज़ न ला सका, क्योंकि इसके अंदर जो अल्फाज का इंतखाब है, और जो तरतीब है, और जो इसका स्टाइल है, और जो तरकीब है, और जो इसके अंदर आपस का रब्त है, और जो इसमें पेशन गोइयाँ हैं, और जो अहकामात हैं, और जो खूबसूरती है, कि पढ़ पढ़ के इंसान का दिल नहीं भरता, और जो इसके अंदर एक नगमगी है, यानी जब इसको पढ़ा जाता है तो दिल के तारों को छेड़ देता है, सुना जाए तो भी लुत्फ देता है। कोई किताब एक से दूसरी मर्तबा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन कुरान जितनी दफ़ा पढ़ो कम है, हर दफ़ा नया मतलब समझ आता है, नए नए उकदे खुलते, नई नई चीज़ें सामने आती, और दिल है कि भरता ही नहीं। तो इसलिए उनको चैलेंज किया गया कि तुम भी इस किताब जैसी कोई चीज़ लाओ। वदू शुहदा अकुम, और बुला लो अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, अपने सपोर्टर्स को भी बुला लो, खुद नहीं काम कर सकते, औरों को भी ले आओ। या ये है कि बहुत से अपने सपोर्टर्स इकट्ठे कर लो, हाजरीन को जमा कर लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिस जिस को चाहो अपनी मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, किस बात में? अपने इस दावे में। कौन सा दावा? कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ ली, क्योंकि वो कहते थे ना, हम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम